करे नर से नार होए उतर तू कहियत की आद पवानी मुक्त की परिया खांच बनी गुरमत रावण।

है ए गुरु की मोहर सुहावन। पहले जब सृष्टि पाई तब ही मानुख देह बनाई, तन इसके सिर केस जो दिनो, सो एह तन श्रृंगार है कीनो, दाड़ा मूछ सिर केस बना।

त्रिग तिस जन्म जो धर्म विसारै प्रातः काल सतसंग ना जावै तनखा दार वै वड्डा कहावै प्रातः काल सतसंग

0: ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख वाग पातशे दसवें शपै संतो प्रसाद चक्र चिहन बरन जातर पात नैन जी
1: रूप रंगा रेख पे को कहना सकत है
0: अचल मूतन को प्रकाश में तोज के जय
1: ओठ इंद्र इंद्र रांड सा हुसा हन गणी जय
0: पवन मीव सरण आर सरण नीत नीत बंतरण कहत
1: सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग पयात छंद
0: नमस्तु ओंकारे नमस्तु ओंकार पाले नमस्तु रूपे नमस्तु जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग वाहे नमस्तंग ठाहे
1: नमस्तंग नीले नमस्तंग नाते नमस्तंग
0: छेते नमस्तंग भंजे नमस्तंग धारे नमस्तंग पारे
1: नमस्तंग
0: नमस्त नर कर्म नमस्त नर परम नमस्त नर देश नमस्त नर पेशे
1: नमस्त नामे नमस्त
0: निर कामे नमस्त निर ताते नमस्त निर गाते नमस्त नर तूते
1: नमस्त नर पूते नमस्त नर लोके नमस्त
0: नर शोके नमस्त नर तापे नमस्त नर थापे नमस्त नर तिरमाने
1: नमस्त नर धाने नमस्त नर
0: गाहे नमस्त नर बाहे नमस्त नर भरगे नमस्त नर सरगे नमस्त नर नमस्त जलाश्रे नमस्त निराश्रे
1: नमस्तंगा जाते
0: नमस्तंगा पाते नमस्तंगा नमस्त नमस्त नमस्त नमस्त नमस्त नमो सर्व काले
1: नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व
0: नमो सर्व कापे नमो सर्व तापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले
1: नमस्त देव नमस्तंगा बेवे नमस्तंगा जन्मे नमस्तंग सुभंगे
0: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे
1: नमो काल काले नमस्त नमस्तंग
0: वरने नमस्तंग मरने नमस्तंग सर्व तंदे नमोस्ता बंदे
1: नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निरबाके
0: नमस्तंग रहिमे नमस्तंग करिमे नमस्तंग अनंत नमस्तंग महंत नमस्तंग सरागे नमस्तंग सुहागे
1: नमो सर्व सुखं नमो सर्व भोगं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व
0: भोग भोगे नमो सर्व दयाले

0: सदा सचदा नाम सर्व परनाशी रूपी रूपे समास्तल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा ब्रेद करता अदो उर्धर दंग अगंग ओगहरता
0: परम परमेश्वर पुरुष पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
1: अशेदिया पेदिया नामंग कामंग समस्तो प्राजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी
0: जलिया थलिया पीता पे है
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है पुचंग प्रयात
0: आदि नंदी स्वरूप नो सर्वान समस्त निदाने
1: नमस्त
0: काल नमस्त पाल नो सर्व देशे नो सर्वेशे
1: नमो राज राजे नमो साज सज्जे नमो शाह शाहे नमो महामहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व
0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्रंग
1: नमो सर्व त्रिसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी
0: नमो जीव नमो बीज बीजे खिजे पिजे समस्त प्रसजे
1: कृपालंग स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट संत प्रसाद
0: अमृत कर्मी अमृत धर्मे खाल जोगी चल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म
0: सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भाने सर्व माने
1: सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
1: प्रभाल शंत वै प्रसाद
0: आद रूप नाद मूजोन पुरख पार
1: सर्व मातर मान देव पेव आदो दार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
1: जिधर तत्र विराजहि

0: करुणालय है, अर्कालय है, काल खंडन है, मह मंडन है,
1: जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
0: जत के त्राण है, जाके करण मन मान्य है, जग जान्य है,
1: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
0: करुणाकर है, विषम पर है, सर्व

0: निरंजन है, रे प्रतापन है, जप जापन है,
1: कृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जस है, भुजंग प्रयात शंत,
1: नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे,
1: नमो राज संताम संशात रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान
1: ध्याने, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो सात रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग
1: बहुते रूपे, लंकर लंके, नमो आशासे, नमो बंग बंके,
0: अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले।

0: देश मलिंद मवासन मादेक जान के मान मलैया
1: गाड़ी गढ़हान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया
0: साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक देवैया
1: दानव देव फनिंदन साचर पूत पवेख पवान जपेंगे
0: जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे
1: उन पर तापन बाढ़ जे तुन पापन के बापुंज खपेंगे
0: साध समूह पर सन्न फिर जग सतर सवै अब लोक छपेंगे
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पचोतर लोक राज करेंगे
0: नानक जाज कदान नेक सुबंबर साज बरेंगे
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे
0: जे नर सिर पत के प्रस है पकते नर फेर न देह तरेंगे
1: कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भगतान लगायो
0: नहात प्रियो लिए सात समुद्रन लोक के ऊपर लोक गवायो
1: बास की उपख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सब ऐस बतायो
0: साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो
1: काहुल पाहन पूड तरे उसे काहुल लिंग

0: कहो सिमर प्यो संकरे केठा
1: दिखाए अचंभव आत स्वरूप से अंभव।
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिक संगरो
1: पाता सकल मलेश करो रण काता
0: जय अस्तुर तब सरणी।

0: एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया
1: एहो तिनकै मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गल्ली गणै ना पाया
1: कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सोनाया
0: पवित होए से जना जिनी हर ध्याया
1: हर ध्याया पवित होए गुरमुख जिनी ध्याया
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत सियो पवित संगत सबाइया
1: कहे दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
0: कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर ध्याया
1: करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए
0: ना जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए
0: मन को बहु शब्द लागो हरस्यो रहो चित लाए
1: कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे ए सहसा बजाए
0: जियो मैले बाहरो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हाय

कर रंगा। प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नाव निदा, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्धा, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन से दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन हुई सुपला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जन आप सिमराई, नानक ताके लागू पाई, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा पूजा, प्रभु कै सिमरन सबके सूजा, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत ना हृदमाए समाए, प्रभु जी बसे साधके दसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंत, प्रभु को सिमरे से पतवंत, प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमुताजै, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजै, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा बनासे, सिमरन ते लागे जने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरे सब से पार उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सत बुलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सहावै, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरे बस अरनेरे, शांत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरा, प्रभु कै सिमरन कबहु ना चूरै, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चले आसाना, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासाना,

के प्रभ साथ स्पदी। जय माता सुत मीतन भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, जहम प्यान दूत जम दलै, दै केवल नाम संग तेरे चलै।

जन को त्रिगुत भुगता हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जन को परिणापंग हर का नाम जन की बड़ियाई हर के नाम जन सुबा पाई हर का नाम जन को पोग जोग हर नाम जन कृष्णाही प्योग जन

पावे तसमूड़ा मानी लाभ जो ठाकुर सतताह जूर है ताको अंधा जान दूर है जाकी टल पावे तिरके मान तुसे सारे मुक्त जान सदा सदाई पूलन हार नारक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सार छोट रूप संग मचै जो छटना सोच तिर कर माने जो हो सो दूर प्राणे छोट जाए तिसका सन्म करे संग सहाय तिस पर हर है चंदन ने उतारे धोए तो करत पीत पसम संग अंत रूप में बत बकराल नानका डलो प्रभ दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पे कंतर मल माया सपना है कश करे स्पाया बाहर ज्ञान ध्यान शरा अंतर वापे लो स्वान अंतर गुण बार तन स्वागल पात्र कैसे त्रि अथा जाके अंतर पसे प्रभे आप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गए ले हो उड़न वहा काव जारत बुझे डोरा नस कही तो समझे पौर आप कहा बसरपत गावे गुंगा जतन करे तो भी सुर पंगा कह पिगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तो आस कवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सो आवे ना चीत जो बराई तास्यों प्रीत बलुआ कह गरी भीतर वसे अंत के मैं रंग रसे दरेकण माने मने प्रतीत काला वै मूड़ै चीत बैर बुद्ध काम क्रोध मोह चूत पकार महल उपद्रो याहू जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर्म कर्म झूठा कर तुम पै अरदास जियो पिण सब तेरी रास तुम आद पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंता सागल समग्री तुमरे।

कई कोट पैमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगात्म नकूरा कई कोट प्रदुख कोहरा कई कोट प्रदुख न कराय कई कोट माया शर्मा कई कोट प्रतिश प्रभाव जित जित लाभ तित लगना नान करते कि जाने करता रचना कई कोट सत जति जोगी कई कोट राजस भोगी कई कोट पक्षी स्वरूप पाए कई कोट पाथर जाए कई कोट पुण संतर कई कोट तिस मंडल कई कोट सस्य सुरन कत्तर कई कोट देवदान इंद्र सर सत्तर सगल समग्री अपने सुतारे नाग जस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस्ताम साधक कई कोट पीत प्राण सिमत सास्त कई कोट की रत्न संबंध कई कोट नाना प्रकार जनता कई कोट किया चरजीव है कई कोट ग्रीम रसवरण थीव है कई कोट जक इंद्र प्रसाच कई कोट पूत प्रे शुक्र विरगाच सबते नेरे सबूते नु दूर नानका अल्पत्रया भरपूर कई कोट कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्म जीव मराय कई कोट बुन जोनी फराय कई कोट बैठ की खाय कई कोट काले थक पाय कई कोट किए तनवंता कई कोट माया मै चिंता जय जय पाणा तै ते राखे नानक सब कुछ प्रभ के आते कई कोट पै बैरागी राम नाम संकलन लागी कई कोट प्रभ को खो जनते आत्मै पार ब्रह्म हंतै कई कोट दर्शन प्रभ आस तिनको मिले प्रभु नास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सुप्रसन्न ते जन सदा तन तन कई कोट कानियर खंड कई कोट आकाश पैमांड कई कोट होए अवतार जय कई युक्त किनु विस्तार कई बार पसरे पसार।

फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दतार मैं नित चितारिया। निखुट न जाए

मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत।

खेल गए से पंखनु जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल जिस

जाए सच्चा पेड़ मल, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए, बिन

सोहंग ताप पछाणी है शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणी है गुरमुख आप पछाणी है गुरमुख पीवो पाहुल ख

सच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। सच कहूं सुन ले हो सब

जिस प्यारे सोने हो तिसिया के मर चलिए मन तन आगे राख के ऊ भी से करे सतगुर आगे शीश पेट देओ जे सतगुर सच पावे जे सतगुर सच पावे आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन हमारे एहे कृपा कीजे हमारे

बिन दर्शन कैसे रहो सनेही, हाँ दोहागन खरी रंजानी, सब कंत है रतिया मैं दोहागन कित, मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर, मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर।

मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया, रंग कसुंभ पुली तो सजन की मैं की मन पौदी, हों तुद बिन अड न लहदे। नानक जी नानक।

निज कर ताड़ी लाई शुद्ध रस नाम महारस मीठा शुद्ध रस नाम महारस मीठा निज कर तत गुसाई तेही।